हो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषी समाचार जिउ पेश पाखे निना दिस थौ नेपाल सम्मत चिन्सा स पिखु द तसलातो अष्टमी प्रधानमन्त्री लिसिङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपाया वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह आया सरकार एक्सप्रेस गाडी जुग्ली गन्तव्य थेनेतुङका जग दिएको थैदिगो रासुपाया नापाङ्गु राष्ट्रिय तमुजिया उलिजिया सत्रे भिग चितवन्या भरतपुरे नोना दिसे वेक्ला गुलिखे रान्तिक पार्टी तेस सरकार गति अनियन्त्रित जुगो ला मुखु तका यागो टिप्पणी त तातुना वेक्ला थैतिल जिम्मुगो सरकार एक्स एक्सप्रेस वे उनाचुङ्गु गाडी ख थो गन्तव्य थेङका जक ब्रेक गतेको जी अनि रिची मखो त मुजिया उलिजिया सत्रे फिन्तुना बिगु झोले छु राजनीतिक दलीय नेता ब्यादीको छ्यातायात पार्टी गम्भीर कत कयागो ध्यादिसे प्रधानमन्त्री शाह आया जन्मदिया त नाला क्यात इनापिना दिल रासोपाया वैचारिक दृष्टिकोण बारे चुता मक्यात इनापिना दिसे वेक्ला रासोपा विकासवादी पार्टी जुगु नाप थातिका दिल रासोपा ज्या याइगु पार्टी ख प्रतिशोध काइगु पार्टी मखु पुलाङ्गु खया त तोतया लुया त सोइगु पार्टी मखु वेक्ल थातुका दिल सरकारी सम्पत्ति व धेवा कोतेला तगु अवस्था आया सरकार कडा कथ न्यागु वेकया धापुदु वेक्ल थाइदिल सरकार नियम कानुन कोतिला मखु नियम हे चुना ज्याय नियम सिमे पिहा वनिगु मखु जिपी तो चिनिगु पार्टी मखु अक्

दुगु दसु दु थुकी शङ्का यामा थगु राष्ट्रियता प्रति दृष्टिकोण नाप सुना शङ्का यामागु वेकनादिल अथे वेकन पाटिया त मुजिया गुट उपगुत देखेको पुलाङ्गु पाटिया अभ्यास त रसोपा था मबिगु नेता दिल बालाम नेता ओरान्तिक जित जनता या मतिना त्याकेमा सुनान पुच या मतिना जुइमकु पुच देखेको पाखे ज्ञानादि मते अजागु पुसा आहे ते मुजु गुकिया त कने सीमा जुदुङका दतुहे त्वाथले मलेमा चिसा पुलापी पाखे थोख सेकेमा वेक्लं धातिका दिल वेक्लं रासोपा नुगु पार्टी जुग्ली नुगु सोचना झ्या उनागु धक्का थटिका दिल झिस थोहे कारिकाले सुकुम्बासी वा सहकारी ठगी सम्बन्धी पङ्ग जेङ्केको जुई आवैगु चुनावे हाक्न थोहे एजेन्डा कोबिना वनेगो जुइमकु आ नुगु एजेन्डा जुना वनेगु जुई वेक्लं धातिका दिल आ रासोपा सरकार जुग्ली फुक्क मन्त्री सांसद पदाधिकारी केन्द्रीय दुज कार्यकर्ता व जनता हे प्रधानमन्त्री जुगु वेक या धापुदु पार्टी या त छदी छप्प देका यङ्के मागुली बब्यादिसे वेक्ल धादिल थङ्कने ओ कस पार्टिया बारे बिचाया उक्या लिपा न्यादतक देया बारे त मुजिया ज्याजुले रासोपाया सभापति रवि लामेछाने थ पार्टी देखे त ओ प्रधानमन्त्री बालिन शाह या त सरकार न्याके त भाला बिमा धैदिल ज्याजुले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा नेकपा हिमालयका नेता प्रदीप गेवाली नेकपा नेता वर्षमान पुन पिन्स ज्याजो सुथा लयमाताका पिन्तुन देशना दिल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा या त समावेशी देखे तेङ्गुदु नापाङ्गु त मुजिया विधान संशोधन याना समावेशी देखे तेङ्गु ख विधान संशोधन समिति या दुज गणेश पराजुलिया कथमा विधान संशोधन आ देखे तेङ्गु कार्य समिति उपसभापति मिसा जिमागु व्यवस्था यागुदु सभापति छम छम मिसानाप सोम उपसभापति निम महामन्त्री व छम मिसानाप न्याम ल्यु महामन्त्री त्याइगु व्यवस्था याना तगुदु अथे छम दाँबरी निम ल्यु दाँबरी छम प्रवक्ता व सोम ल्यु प्रवक्ता जुइगु व्यवस्था दु अथे समिति सचिव ने छम दुज जुइ गुइ गुम त्याइगु व सभापति ने छमेसी त लिएगु वन समावेशी प्रक्रिया लिएगु सभापति लिएगु व्यवस्था याना तगुदु नेगु प्रदेश या सभापति पदेन सदस्य जुइगु न विधाने नेतना तगुदु वृद्धा विस्तार नीति योग धैको नारा तया मिग अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपाल नाप थिति ज्याजो याना तजिक हङ्गुदु अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस देदस जुन 21 तारिक दिने थिति जेन चतनामूलक ज्याजो त गोसागुया न्याकेगु याई संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा सन् 2014 यागु निर्णय कत सन् 2015 जुन 21 निशे अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस न्याकेगु याना हगु ख भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी संयुक्त राष्ट्र संघीय खुइगु खगु महासभा योग शिक्षा नीति न्याप्ने या नीति आवश्यक जुगुले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस या कोष्ण या त प्रस्ताव तयादिगु ख उगु प्रस्तावे नेपाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नापाङ्गु

निसे एक योग विषय अध्ययन नाप याका चंगुदु ये महानगरपालिका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोल इजरायल या तेल अभिवे जुइगु म्युनिसिपल कन्फरेन्स या चिकको संस्करण पदिका त इजरायल झायादिगुदु इजरायल सरकार विदेश मन्त्रालय बोन्या डङ्गोल निसे प्रवक्ता नवीन मानेन्दर व विपद व्यवस्थापन समिति कजी प्रेम थापा शनिबार बहनिया उडान पाके ज्याजो नीति प्रस्थान यनादिको ख सफल साझेदारी विनिङ पार्टनरसिप मुख्य जुइको सम्मेलनी बोधिका त हलिया सत्य शिव अपो सर या प्रमुख नगरपालिका नेतापी सरकारी अधिकारी सहरी योजनाकारले चाहिँ विज्ञपनीको बोती दैगु थागुदु सरोकारवाला पिच समावेशीले चाहिँ सुरक्षित सुचुकुचु सेवा विस्तार नीतिगत अस्पष्टता इजाजत पौ कायागु नीति जटिल प्रकारले चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन या नीति प्याची जुगु थ्या मधुगो मु हात्या कथ खङ्गु थाइतिगु दु थनगु सागो गु समावेशी सरसफाई र सञ्चार माध्यम भूमिका विशेष अन्तर्क्रिया निजी क्षय या प्रतिनिधि पिन्छ मलमूत्र व्यवस्थापन खेले ज्या या त मागु इजाजत पौ का त थाकुगु प्रसुदित वा सङ्कलित फोहोर व्यवस्थापन या नीति प्याची थ्या अभाव जुगुलिसे नीतिगत स्पष्ट मधुगुलि सेवा तब्याके त पङ्ग चुयाचुङ्गु थ्याचु पङ्का दिल खानेपानीले चाहिँ ढल व्यवस्थापन विभाग डाक्टर रञ्जित ओझा नेपाली चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बारे प्रस्तुति व्याधि से सुरक्षित समावेशी सुचुकुचु सेवा प्रबन्धन या निजी क्षय भूमिका महत्त्वपूर्ण जुगुन यत्ना दिल वेक्ल सुचुकुचु सेवा या आय अवस्था तथ्याङ्क हात्याना पन्थिति देश निजी क्षय बोधि पाके ता लाकुगु उपलब्धि या बारे जानकारी व्याधिल पोखरा या पृथ्वी चौके दुगु बस पार्के अनाधिकृत रूपमा देखा तगु वास्तोला कम्प्लेक्स या सोसौ निगु सटर नापै संरचना पोखरा महानगर चिकुगुदु सेतीखुसी लिक चुङ्गु थो कम्प्लेक्स बस पार्क डेके त चिकुगु ख थोयदोथी महानगर सुकुम्बासी बस्ती या न्यासौ ने निम छेज मध्ये आतक सोसौ सिन हेम सियागु भो या त दुवाला सोगुदु मिग जुम हुम्ला जिल्ला श्रीनगर जख केन्द्रीय बिन्दु जुया फुखा बोगु ख राष्ट्रिय भूकम्प मापन व अनुसन्धान केन्द्र कथम हिग हिनेसिया निता जुया श्री निता इले हुम्ला श्रीनगर क्षेत्र यात्रा केन्द्र बिन्दु जुया पेङ्गो फुटी छगु रेक्टर स्केला फुका बोगु ख फुका बोगु धक्का हुम्ला लिसे जख या जिल्ला महसुस जुकु जानकारी वगुदु अमेरिका व इरान दत्वी ल्वाफु नङ्केगु तातुना सल यहाँ चङ्गुदु स्विजरल्यान्ड या लुसियन सरे मिग न्यागु सल स निगु पक्ष दुग्यङ्क सम्ति यागु कथ सल व्याका चङ्गुदु सल स अमेरिकी पक्ष पाखे उपराष्ट्रपति जेडी भान्स स्टिभ विटकफ व जेराड कुस्नर बोधिकाइदिगु दुदासा इरानी पक्ष विदेश मन्त्री अब्बास अगर चिनापया अधिकारी पिनिगु बोतिदु पाकिस्तानी कतार या शीर्ष नेता पिनिगु स्विजरल्यान्डले बोति काइदिगुदु फिफा विश्वकप फुटबल धेन्दे बाल्ला स्पेन साउदी अरबिया त बुकुगुदु एटलान्टा स्टमे जुगु कासा स्पेन साउदी अरबिया त पेङ्ग गोल त्याकुगु ख थोपुचले उरुग्वे साउदी अरेबिया व केप भर्डिया छगु छगु जक अङ्क दुगु ख अथेहे मिग जुगु बेल्जियम व इरान दतिया कासा छगन गोल मुजुसे अङ्क इनाका गुदु उरुग्वे व को भर्डे दतिया कासा निग निग गोल याना अङ्क इनाका गु ख स्पेन या त बराबरी यागु के भर्डे निकतक विश्वकप त्यागु उरुग्वे या त न बराबरी यागुदु थोया दथुई नगतनी जुगु कासा न्युजिल्यान्ड ओ इजिप्ट या कासा इजिप्ट सङ्ग गोल याना न्युजिल्यान्ड या त बुकुगुदु इजिप्ट सङ्ग गोल निगु हाफेजक या त तालागु ख नापाङ्गु हाफे न्युजिल्यान्ड छगो गोल यागु ख इजिप्ट नापकुसी विश्वकपे त्याना सङ्गु अङ्क क्या त तालागुदु स्टार खेलाडी सलाह न इजिप्ट या नीति छगो गोल यानादिगुदु
थौ देन्यङ्क मौसम हिला न न्याइगु लाप्सा तोइगु वा वैगु हिमाली लाग्या च्वापु कुवा वैगु धुकमा यागुदु लुम्बिनी नपय तराई लाग्या ता नोइगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागु ख।

खेल कर पाई पालो बाक तपाई सुना बोले अपुर को सरकोटे काट सानो माया बाट सुना बोले अपुर को

केही नै धाट मैले झापै आँट्न हो के होइन हो भनी हैसे लु काँचो बोला साँचो साँचो हो के होइन हो भनी तिम्रा बाउले सोधे च्याप्प समय गयो।

0: यति हाते परन किन गर्थे मैले साँच्चै मना नपरे महिना वर्ष दिन कुरी बस्थे किन साँच्चै मना नपरे
1: बर्खे भेला छोपी मुठी मानु रोपी पाथी मुरी फला

शनिबार उसी ठाउँमा कानुन छलीको लागू औषध कारोबार भैधर्ल बाल्लार सूचनाका आधारमा पुलिसक टोली भीमदत्त अठार बस्लार तसु उही ओडाक ओडा सदस्य रूपा जैरूलाई शङ्का लाग्ला अवस्थामा समात्लो हो। पुलिसले आज जारी गर्ल विवरण अनुसार ओखलै खान तलासी कर्ते खनी दाइने काखी पाटार कार्दो प्लास्टिक पोकामा नोकाको धर्ल प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड सुई 15 एम्पुल तसु बुप्रेनोर्फिन हाइड्रोक्लोराइड सुई 15 एम्पुल जम्मा 30 एम्पुल समात्ल जनाल रचिक। झापा गौरीगंज गाउँपालिका 4/22 टोलमा विषालु सापे कप्टीको एकजना बुद्रो मानिसक ज्यान जैरेले गौरीगंज 4/22 टोलक 88 वर्षक पञ्चमाया शेर्माक जैलकानो ब्यारको कुखुरी खोरक डेर लाइटे खनी इट्टाक थुप्रोकबाट निस्कल विषालु सापे दाइने हातमा कप्तीको ज्यान जैल जिल्ला पुलिस कार्यालय सूचना अधिकारी डिएसपी रञ्जन अवाई जानकारी दिल रछात्। यसनिके रुकुम पश्चिमक मुसिकोट नगरपालिका एकक सुन्दर भण्डारी करन्टा लागेको ज्यान जैरेले पश्चिम मुसिकोटक मुग्लु लरीमा करन्टा लागेको माछो मार्ते खनी ज्यान जैल जिल्ला पुलिस कार्यालय मुख्य डिएसपी वेद बहादुर पौडेले जानकारी दिल रछात्। नेपालमा भैधर्ल समयभन्दा 6 दिन अबेर करेको झिल यी वर्षक मनसुनी प्रणाली देशक पूर्वी तसो मध्य भागमा बढिरहेले पानी तसो मौसम विज्ञान विभागक मौसम पहिला कर्लर अनुमान महाशाखै आज जारी कर्ल मनसुन बारे बुलेटिन अनुसार कोशी प्रदेशकबाट जैल शुक्रबार नेपालभित्रल मनसुन आज थप 4 वटा प्रदेशमा बढ्लार भइरहेले महाशाखाको अनुसार अग्नि मनसुन कोशी प्रदेशक से विभाग मध्य प्रदेश बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेशक किछु भाग तसो लुम्बिनी प्रदेशक पूर्वी ठाउँसम्म फैलिरहेले यीमाझ मनसुनी प्रणाली अझै कमजोर अवस्थामै रहेको देशक बाँकी ठाउँमा बढेले अझै किछु दिन लाग्लार विभागक मौसमविद सञ्जीव अधिकारी जानकारी दिलर छात्। आजुलाई दनवारी भाषाक समाचार सिद्धिलेख हस्त शिवा ढोकरिनु।

सुवाइनी छ गेतान स्यालगारी राङदा टिप्पेन टेनमुला अमृत लामा थिन बबिता पाखरिनला कायरी मुबा वाइसे विवन मुबा एला माया गादे मुला बिबताम खाजी बैनुन छिक सेपाङ मारे आखाम चुमी सेमनाङ रे कुटीसी नुप्टाला सिटी बमला नुप्टाला सि ताबा मुला रांसे मायाला बमी भौतिक रूपले घाटे दम्मन थारेङ मुसाइनुन थे माया बिबसे खाइमाइनुन च्याङना ताब मुला दिल्ल बिसम मायाला बमी खाइमा दमन मिला सोच थिन भावना नाङ्रिन टिप मुला मायाला बमी छ्याम्नन तामा सेम शान्ति थिन सेम प्लिङ सि पूर्ण तबरङमा मान्नु मुला मायाला बमी ङम्रे आरेमा लामन से आछ्यो बरङमा मान्नु मुला बिसिनुन मिगा देसे पाङमन खाप मुला चु सन्दर्भ जोरी धानबेन टिप्पेन गेताङ रे अर्को वाइङ्गे चु वाइनुन माया प्रीतिला वाइ मुला वाइ से बिबन मुला दिन बा एला थे माया याङसी चुसेम नला फुर्ताङजी एला लेप्पा थे साथ याङसी नलाई चुसेम फुर्ताङजी बिहुवाई वाइ रिकाइमुला आवालामा थेन दिपाला

हावा लामा तिन दिपा लामा लकाइरी मुबाचु वाइले छ गेताङ स्यालगारली दिप्पेन अर्को वाइङ्गे वाइसे विवन मला माया लामा हिन्सेम नायला सिमनाङरी खाइमादामन टिबरी खाम्न विभागा विश्वास मला दुई थिन परिस्थिति खप्पदामन मुसाइनुन गाला भावना गाला माया खाइमाइनुन पोसेला अरे ये गाला लुइला खप्पै बिमा लामन महत्वपूर्ण मि ये तबसे चु ब्रेलबा चु सम्बन्ध तान्दे त चक्के नाङ्गिन रेङबा दुई दोना अर्थात् जुग जुग दोना माया लसिन टिसेलमला विभव वाइङ्गे वाइसे विभनमला माया लसी सेम्री कोर्ला जुनी जुनी भर्दा छ्योना एलन माया जैलेन जैलेन चु तिङ नाङ्री सोला विभवाई वाइरिकाइमला सन्तोष लामाथेन सुमिन लोला।

गीतङ सालगारी राङदा देपेन डेनमुला बन्दिराङ सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल ग्याम तामाङ गुएला सातला तिरेम खाबा स्यालगार गेताङ यान छिपा गेनमला तिरेले गेताङ रे ज्याब ज्याब अझ पाङ्नमा रोमान्टिक वाइ गदे यान छिपा गेनमला चुनुन ताङरी अर्को भाइ यान गेया धरेम थानबेट मुबा वाइ से पाङबान मला एनुन गाला सेमला रानी गाला मायाला खानी हिन्न बिबताम सेमरी खाइमा दामान ङाम सिटी बोमला दिल्द बिसाम यसै गाला लुइरी विशेष ग्लाहकिन सिटी बोमला गाई ह्याङला मायारी देनब माया थेन लामन नुप्प आत्मीयता याङ सिटी बोमला यथेन गाला चु माया से ह्याङला लुइद अर्थपूर्ण सुपारी खाम बोमला यथेन गाला चु ब्रेलबा चु माया खाबरेरी अझ नुप्सी निसेल मला विवाह राङबा सिक मुब भाइङले वाइसे बिबन मला गाला सेमला रानी ए गाला मायाला खानी ए एनुन गाला सेमला जो एनुन गाला लुइलरो वाइरी काइमला अमृत लामा थेन शशिकला मोक्ता आनला।

0: धन्दे धन्जी धन्देला ब्योन पुस्ताला काइपा विशाल कालतान थेन काइमो जितु लोपचनला काइरी म बच्चु भाई वास्तवरी धन्दे विशाल थेन जितुल वाई को बा जोडिता तामाङ वाई संगीत माया लाबाका देशै लामन सेमनी सिटी बोला विशाल थेन जितुल वाई को बा जोडी राङमान तामाङ वाई संगीत थुम्ला मूर्धन्य काइपा चन्द्रकुमार दोङ थेन डोङबा काइमो इन्दिरा गोलेला जोडी दानुन लामन सेन सेमनी बोबा दान्देनुन सेमनी सिटी बोमला जुदे लामा सान सान वाइगा दिन यान सिटी बा दुइरी लेजेन्ड काइपा थेन काइमला काइरी मोबा वाई आङ्यान सम तिनीलाई गे तानुन अपुरो तबारी खाम्ला त्यता बस्ते दान्दे दन यान गे एमी गाला सेमला लानी एमी गाला मायाला छु जुसेम गाला चुलुई गाला तिनी हेन्से एदन चुलजी ए गाला मायाला जुबे बो वाई वाइरी काइमला चन्द्रकुमार दोङथेन डोङबा काइमो इन्दिरा गोलेला
1: ए

0: जु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिर रिढाङनी दा ढेनमुला गा इन्दिरा थिङ काइब्लोन बालेन्द्र साहसे सौरारी मुबा हात्ती प्रजनन थेन तालिम केन्द्र खोर चोर तिनी च्यास्यु बामुला प्रजनन केन्द्रला घ्रेनपो मणि पुरन चौधरी से सुङबानसार खोरसोमला तालिम केन्द्र रि दाते गोर्कु मामा थेन गोर्निस हात्तीला कोलामुला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीला ग्रेन गोबोन काइब्लोन सह पार्टीला गिक्चा हुल्बाङ ग्रेन वाल्डी पोकिनबारी तिलमा हेन्चे चितोन डिमुला चुराङलासिन सूचना थेन सञ्चार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिनासे हुल्बाङ समाचार समिति रा सस भरत पुरला छार शोभा तालिम दिमखाङ तिनी च्यास्युबा मुला छार शोभा दिमखाङला मोकोन कच्छ च्यास्युबा लिचा खाम्दे योनान चु दिमखाङ ग्याम गे तिदोला बिसी सुङबा मुला सघन सहरी थेन दिमखाङ शोभा आयोजना चितोन से करोड घाँसे लाख निश्चुइ घिक टाङ्गारी शोभा रासस दिमखाङरी गोर निचुइ कोठा मुला नाछला ब्लोन राजेन्द्र खरेल ब्रेचुई ढिङ्री ढोङबामुला नेपाली काङ्ग्रेसला गोबोन खरेल तिलाई दिङहेन्से दम ह्याम ग्याम आखाम बातास्युबामुबा याम्बुला बानेश्वर रिमुबा फ्रन्ट लाइन अस्पताल रि मान लबन लामा तिलमा ढोङबा हिँला विक्रम सम्बत 2003 साल रि काभ्रेला खरेल थोक्री केस्युबा राजेन्द्र विक्रम सम्बत 2056 ला चुनाव रि काभ्रे ग्याम प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव रि डास्युबा मुबा खरेलला तिनीन पशुपति आर्यघाटरी मे पिन बामुला नेपाली काङ्ग्रेसला चोहो गगन कुमार थापासे पार्टी गोबोन्थेन गाछाला ब्लोन राजेन्द्र खरेल ढोङबासे दुङ्युर प्रसाल च्युबामुला चोहो थापासे तिनी दुङ्युर सानग्युर ग्याम डोङबा खरेलला भ्ला साङ्गे हुल्डी दोगाई बिबान दिम थेमेसे चु ढुङ्गाला धुरी सु नाबारी खाम्बा भङ याङ्गाई भिची सुङबामुला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपासे राङ्ला विधान संशोधन लाबान पार्टी संरचना दा दातेला बिमा समावेशी शोभा ताबामुला समावेशी सहभागिता सुनिश्चित लाबा लासी विधान संशोधनला प्रक्रिया गाछा भोरबा ताबा लिछा लाभ याङबा थेत्मा थेत्माकादे ताङबामुला पार्टी चे जामेकोला जनजाति मधेसी दलित थेत्माला पछरी निर्णय लाबा विमान चु थेत्माकादे ताङबा हिँला मियो समितिला मेन्दो कुचुई कु सदस्य कादेरी प्रदेश ग्याम गोबाङ लाबा गोर्की प्रदेश ला मेन्दो गाला धर्से मेन्दो सोमचुई गा सदस्यता पूर्ण समावेशी शोभा ताबामुला रेङ्बा दुई हेन्से बन्द धुरी मुबा हेटोडा क्वान उद्योगदा दोषी सेङ्बा सरकारला तयारी छ्याम सरकारी निकाय घ्याम्नोन च्याबा गोबा लाबानमुला हेटोडा औद्योगिक थुमढाङ्री 2032 साल डी ठोङसी 2035 साल हेन्से सेङ्बा हेटोडा क्वान उद्योग 2057 साल हेन्से भन्द ताबा मुबा हेटोडा क्वान उद्योग दोषी सेङ्बारी काइब्लोन थेन ब्लोन सेङझाङला घेझाङसे सेम किन्बासे उद्योग छोङथेन आपूर्ति ब्लोन गौरी कुमारी यादव उद्योग ऋण दोषी च्याबा गोबा लास्युबा मुला लाना छेप्पा छाबा लिछा धनगढी उपमहानगरपालिका से मोकोन लोपखाङ कादेरी लिरा बिदा पिन्बा निर्णय लाबामुला उपमहानगरपालिका से तिनी सार्वजनिक सूचना छिपान लानन छेप्पा ताबासे लामा लोबोन कादेला लुइरी समस्या राङबासे नगर थुम्ला मोकोन लोपखाङरी लिरा बिदा पिन्बा निर्णय लाबा हिँला उपमहानगरपालिकाला निर्णय लिछा नाङ्गर हेन्से चुई निला कुनु धोना सरकारी थिएन प्राइभेट लोमखाङ कदेरी ब्रिबा डोबा बन्द लाबा ताबा हिँला चुराङ लासिन लानन छेप्पा लेबा लिछा कञ्चनपुरला बेदकोट नगरपालिका सेनोन ब्लिरा दोना लोमखाङ बन्द लाबा निर्णय लाबा मुला नगरपालिका से लानन छेप्पा से लामा लोबोन कदेला लुइदा च्यासी नाङ्गर हेन्से शुक्रबार दोनादा नगर नाङ्ला मोकोन लोपखाङरी भिदा पिन्बा हिँला बिसी ग्रेन प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्ट से सुङबामुला भीमादत्त नगरपालिका सेनोन लानन छेप्पा लेबा विमान सरकारी थिएन प्राइभेट लोपखाङरी चुई निरा भिदा पिन्बा निर्णय लाबामुला सम्पत्ति शुद्धिकरण लातामरी निगरानी लाबा मोख्युल निकाय वित्तीय कारबाही गेदल से नेपाल दा दाते नोन निगरानी सूची अर्थात ग्रे लिस्टरी थान बामुला नेपाल से लानन ज्याबा सुधार लाबारी बङ लाबान खाबा मुसाइनोन दाते धोना स्यान्दो तिलाइनोन सुधार लाबारी खाम्बा म्राङबा आरेबिसी गेदल से पाङ बामुला गेदल से चुनन असार गाला कुनु अर्थात जुन 19 रे नेपालदा ग्रेड लिस्ट रे थान्बा निर्णय लाबाखिनला। हुम्लाला नामखाम गाउँपालिका ग्याम नेपाली सेनाला हेलिकप्टर से जिउनी ताबा जामेकोलाला उद्धार लाबामुला। नामखा गाउँपालिका गिकै हेक्का दिम ताबा निचुब्रे दिङला सरी लामादा नेपाली सेनाला हेलिकप्टर ग्याम उद्धार लाबाखिला। कोला आमाला बेथासे चुङबा लिछा जोङ अस्पताल हुम्लारी बाबा लामादा लुई नोङबा निबा लिछा हेलिकप्टर ग्याम उद्धार लासी सुर्खेत बाबा हिनलाबिसी लुई सेवा गेजाङसे पाङबा मुला। लामा ला तिनी स्योरी नेपाली सेनाला हेलिकप्टर से उद्धार लाबहिनला। फ्लाई दुबई से खाबा असोज लाला निस्ला कुनु हेन्से पोखरा हेन्से दुबई दोना सिधान उडान लबा सेवा सेङबा ताबामुला। पोखरा हेन्से दुबई दोना सिधा उडान सेङबा लिछा पोखरादा मोकिल हवाई सञ्जाल दि थुइ सेदामुला। सोमदिङ गाछा हेन्से सेङबान खाबा मुसाइनोन पोखरा मोक्युल एयरपोर्ट ग्याम स्यान्दो युल्डी नियमित उडान लबारी आखामना टिबामुबा। सन् 2025 ला फागुन लारी हिमालयन एयरलाइन से गिक्छा रेम पोखराथेन लासारी नियमित व्यावसायिक उडान तिबा मुसाइनोन च्याङना जेखेन मी खाबासे उडान सेवा सेङबारी ख्लाबमुबा। कञ्चनपुरला भीमादत्त नगरपालिका चुइभ्रे कटान ला गौरी लखाङ टोल ग्याम प्रहरी से न्योत्पा मान छ्याम ओडा सदस्य दा चुङबा मुला। जोङ प्रहरी गेजाङला प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर रावल से सुङबा अनुसार होजा थुम्री न्योत्पा मान चुङबा ग्लुबा ताबान मुला बिबा थेबा लिछा प्रहरी टोली से भीमादत्त चुइभ्रे दिम ताबा होजान ओडाला ओडा सदस्य रूपा जैरुदा चुङबा हिला। ट्राफिक प्रहरी से याम्बु उपत्यका ग्याम फिर्क्याप निभा मिनी कादेदा दुख पिन्सी हैरान शोभा विवान चुरङ लाभा कादेदा चुङबा मुला। याम्बु उपत्यका ट्राफिक प्रहरी गेजाङ ग्याम निभा टोली से कोटेश्वर थेन जडीबुटी थुम्री थान्बा बस काउन्टरला कर्मचारी ड्राइभर खलासी से मिनिदा आतोबा दुख पिन्बा विवान तिनी मेन्दो चुइदा चुङबा हिन्ला। धनुषाला चुइब्ली दिङला सूर्य बहादुर देवकोटा दोलखाला सोमचुई नि दिङला प्रकाश शिवाकोटी भक्तपुरला गाँचुइङा दिङला हरि भजन थापा दोलखाला सोमचुई ब्रे दिङला दिल्ली प्रसाद लामिछाने सिन्धुपाल्चोकला निचुई ब्रे दिङला सुरेश तामाङ दा चुङबा मुला बिसी याम्बु उपत्यका ट्राफिक प्रहरी घेजाङला सुङबोन नरेश कुमार सुवेदी से सुङबा मुला। चुराङला सिन सिन्धुलीला निचुई निस दिङला तिल कुमार थापा दोलखाला निचुई डु दिङला खड्क बहादुर तामाङ सिन्धुलीला निचुई डु दिङला डोर कुमार श्रेष्ठ दोलखाला भ्लिचुइङा दिङला नन्दलाल बुढा थोकी थेन सिन्धु पाल्चोकला सोमची डु दिङला राजेश सापकोटादान प्रहरी से चुङबा मुला। तिलमा मुना नामछ्याम ताइबा ढुइसे ताप्ले जुङरी गोर्सोम दिमरी छेती शोभा मुला विषम गोर्की जलविद्युत आयोजना भाल्चे भ्योङना लाभा मुला। जोङ प्रहरी गेजाङ ताप्ले जुङला अनुसार फत्ता लुङ्ग गाउँपालिका ला ओडा गिक सावा दिनला तिमरिङ रि ढुइसे दुर्गा लिम्बु गणेश कटुवाल थेन सोम बहादुर लिम्बुला दिम ढुइसे नाङबा मुला। काभ्रे जोङला मण्डन देउपुर नगरपालिका चुइनी ठुली बेसीला इन्द्रावती गान्धीरी तिलमा मुना टिपर से च्याप्दीमा जेबिसी सेङबा डाइभर सिबा मुला। पाँचखाल नगरपालिका ब्रे होक्से दिम ताबा चुइकु दिङला देवेन्द्र तामाङ सिबा मुला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङला प्रहरी नायब परीक्षक रविन विष्ट से सुङबा मुला। चुराङलासिन रुकुम नुप्ला मुसिकोट नगरपालिका घिक्ला सुन्दर भण्डारी करेन्से चुङमा सिबा मुला। नुप मुसिकोटला मुग्लु च्योङरी करेन्ट ग्याम तारङा सेवा धुइरी घाइते ताबा लिछा जोङ अस्पताल सल्लेरी मान लबान लामा सिबा हिनलाबिसी जोङ प्रहरी गेजाङ ला डिएसपी बेदबहादुर पौडेल से सुङबा मुला। स्यान्चिबन मुबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला।
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
2: नेपालको समावेशी आवाज।
3: श्रोतावृन्द नमस्कार। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सञ्चालित शैक्षिक रेडियो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौ। श्रोता विद्यार्थी, आज हामी माध्यमिक तह कक्षा 10 विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 3 मौरी अन्त

ई रेडियो नेपाल थिक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सौराहा स्थित हाथी प्रजनन तथा तालिम केन्द्र खोरसोरक आए निरीक्षण कयलनि अछि। प्रजनन केन्द्रक प्रमुख मणिपुरन चौधरीक अनुसार सपरिवार प्रधानमन्त्री शाह तालिम केन्द्र पहुँचल छलथि। खोरसोर स्थित तालिम केन्द्रमे एखन 9 माऊ आ 7 हाथीक छाबा रहल अछि। राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीक वरिष्ठ नेता सेहो रहल। प्रधानमन्त्री शाह पार्टीक पहिल राष्ट्रीय महाधिवेशनमे भाग लेबाक क्रममे चितवनमे छथि। मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव प्रदेश सरकार किसानक पक्ष में काज कर रहा बतौलन अछि। आई रोहतक गढ़ीमाई नगर पालिकाक 13 नगर सभाक आई उद्घाटन करैत मुख्यमंत्री यादव मध्य प्रदेश में किसानक बाहुल्यता रहल जानकारी दलन। ओ उत्पादन के लिए किसान खुशी नहीं बनेबा धरि कृषि अर्थतंत्रक विकास असंभव भेल जानकारी दैत कृषि में आबद्ध किसान के कृषि अनुदान उपलब्ध करबाक संदर्भ में सरकार अग्रसर भव आगू बढ़बाक बात बतौलन। नगर सभा में गढ़ीमाई नगर पालिकाक नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादव आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए 59,22,55,000 टकाक बजट प्रस्ताव कयलनि। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा राष्ट्रीय समाचार समिति भरतपुरक नवनिर्मित तालीम भवनक आई निरीक्षण कयलनि अछि। नवनिर्मित भवनक सब पक्षक निरीक्षण पश्चात यथाशक्य संचालन में आनबाक बात बतौबत कर्मचारी तथा स्थानीय समाचारदाताक संबंध में जानकारी लेने। ओहि अवसर पर संचार मंत्री डॉक्टर तिमिल सिन्हा समाचार सेवा के यथाशीघ्र रूप में संप्रेषण करबाक निर्देशन दलन। समाचार सामग्री उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका रहल। राशा सह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में द्रुत गति में भेल विकास के आत्मसात कर देश आ जनताक पक्ष में सेवा प्रवाह कल जेबाक बात पर जोर दलन। सघन शहरी तथा भवन निर्माण योजना चितवन से 5,76,71,000 टकाक लागत में निर्माण कयल। राजा सभा में 20 कोठली आ सभाकक्ष रहा है। भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 स्थित भरतपुर में अपने जमीन में निर्माण भेल राजा सह तालीम केंद्र भवन में भूमिगत पार्किंग सेहो रहा है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा अपन विधान संशोधन करैत पार्टी संरचना के थप समावेशी बनेबाक भेल अछि। समावेशी सहभागिता सुनिश्चित करबा सन विधान संशोधन के प्रक्रिया आगू बढ़लाक बाद प्रत्यक्ष लाभान्वित होबाक समुदाय सब उत्साहित देखल गेल अछि। पार्टी महिला जनजाति मधेसी दलित समुदायक पक्ष में निर्णय कयल कहैत लाभान्वित समुदाय उत्साहित बनल अछि। आधा जनसंख्या रहल महिला मध्य एक गोटे केंद्रीय उपसभापति होयबाक व्यवस्था कयलक अछि। केंद्रीय समिति के 99 गोटे सदस्य मध्य प्रदेश सँ प्रतिनिधित्व करबाक 1 प्रदेशक 5 गोटे के दर सँ 35 गोटे सदस्य के पूर्ण समावेशी बनाओल गेल अछि। 1 प्रदेश सँ कम से कम 2 महिला अनिवार्य होयबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। प्रदेश में उपस्थित जनसंख्या के आधार पर गंडकी आ कोसी प्रदेश के 1 गोटे जनजातिक लेल कोटा राखल गेल अछि। एहि तरहें सुदूर पश्चिम कोसी प्रदेश में 1 गोटे दलित अनिवार्य होबय पड़त। लुमनी में 1 गोटे थारू मध्य प्रदेश में मधेसी दलित अनिवार्य का समावेशी सिद्धांत के आत्मसात कयल गेल अछि। एहि संदर्भ में मध्य प्रदेश सँ प्रतिनिधित्व करयवला महाधिवेशन प्रतिनिधि सब समावेशिताक सिद्धांत सँ सब व्यक्ति तथा समुदाय के समान अवसर आ समान प्रदान करबाक कहैत पार्टीक निर्णय प्रति खुशी व्यक्त कयलक अछि। राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय राष्ट्रीय आर्थिक गणना 2082 अंतर्गतक स्थलगत तथ्यांक संग्रहण कार्यक प्रगति सार्वजनिक कयलक अछि। राष्ट्र तथ्यांक कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कार्यालय प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डॉक्टर कमल प्रसाद पोखरेल तथ्यांक प्रविष्ट भेलाक बाद रोजगारी श्रमिक संख्या तथा आर्थिक गतिविधि संबंधी विवरण सार्वजनिक कयल जेबाक आ एहि सँ सरकार के नीति निर्माण तथा आर्थिक निर्णय में सहयोग पहुँचबाक बात बतौलनि। प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डॉक्टर पोखरेल तथ्यांक संकलन कार्य निर्धारित लक्ष्य अनुसार सम्पन्न होइत गेल आ प्रक्रिया में बाकी रहल प्रतिष्ठानक गणना अनुसार मशांत धर्म में सम्पन्न करबाक निर्णय भेल जानकारी करौलनि। बैठक में नेपाल राष्ट्र बैंक सँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सहित मूल्य तथ्यांकीय संबंधी कार्य सभक संपूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र तथ्यांक कार्यालय में अगला 1 वर्ष भीतर चरणबद्ध रूप में हस्तांतरण होबाक तैयारी आगू बढ़ल। कार्यालयक उप प्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढूंढी राज लामी छाने जानकारी दलनि। मध्य प्रदेशक जिला सब में लैंगिक गरीबी का अवस्था बहुत भयावह रहल कहित एहि में सुधार के लिए एकीकृत प्रयास होबाक आवश्यकता पर जोर दलन अछि। मध्य प्रदेशक खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय का आयोजन तथा सेव द चिल्ड्रेनक सहयोग तथा लाइफ नेपालक समन्वय में सशक्त महिला समृद्ध नेपाल अंतर्गत सामाजिक संरक्षण के स्थायी वित्तीय व्यवस्थापन उद्यमशीलता तथा समावेशी विकास संबंधी संवाद कार्यक्रम में सहभागी वक्ता लोकन एहि बात पर जोर दलन। वक्ता लोकन महिला तथा पुरुष के बीच में रहल विभेद के कारण लैंगिक गरीबी बढ़ल कहित मध्य प्रदेशक जिला सब में एखन बहुतों महिला सब
चूल्हा चौका में लगलाक कारण लैंगिक गरीबी के समस्या रहल बतौलन। वक्ता लोग मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम समान लाग बावजूद एक सफल कार्यान्वयन नहीं भ सकल बतौलन। मध्य प्रदेशक महिला तथा बाल बालिका समिति के सभापति रूपा कुमारी यादव मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए आनल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के निरंतरता नहीं देव चिंताक विषय बतौलन। नेपाली कांग्रेसक मध्य प्रदेशक प्रमुख सचेतक कुमारकांत झा महिला संघ महिला विभेद अधिक रहल कहित एके चुलित आगू बढ़त जरूरी रहल बतौलन। नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतो मध्य प्रदेशक जिला सब अन्य प्रदेश से सुगम भेलाक बावजूद एहिठामक शिक्षा स्वास्थ्य आ गरीबी के अवस्था भयावह रहल बतौलन। मध्य प्रदेशक नीति तथा योजना आयोगक उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह मध्य प्रदेश सरकारक नीति तथा कार्यक्रम अपांग महिला तथा युवा के लक्षित कर आयल बतौलन। ओ 1,00,000 युवा सबके डिजिटल उद्यमशील तालीम प्रदान करवा कार्यक्रम रहल बतौलन। मध्य प्रदेशक खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय सचिव सुशील कुमार शाह के अध्यक्षता में भेल वही कार्यक्रम में समावेशी विकास विद ठाकुर डाकाल सेहो बादल छलथि। कार्यक्रम में मध्य पूर्व नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर सोहन शाह मध्य प्रदेशक खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय सचिव सुशील कुमार शाह सहितक व्यक्ति लोकन अपन अपन प्रस्तुति देने छलथि। चलचित्र विकास बोर्ड हाल चलचित्र भवन में प्रदर्शनरत नेपाली चलचित्र द्वारा कैल कमाई के विवरण सार्वजनिक कैलक है। बोर्ड एक सूचना जारी करते ही अखाड़ 7 गते धैर्य में सिनेपा 2 बॉक्स ऑफिस में उल्लेख भेल अनुसारक विवरण सार्वजनिक कैलक है। विवरण अनुसार एहि वर्ष अखन धरि प्रदर्शित चलचित्र मध्य सबसे अधिक कमाई चलचित्र लाली बाजार कैल कैलक है। बोर्ड सार्वजनिक कैल तथ्यांक अनुसार चलचित्र लाली बाजार नेपाल में 9,28,14,505 कमाई कैलक है। अभिनेत्री स्वस्तिमा खड़का केंद्रीय भूमिका रहल चलचित्र लाली बाजार के वही अवधि में 3,15,714 टिकट बिक्री भेल है। बीतल बैसाख 25 गते से नेपाल भरिक चलचित्र भवन में प्रदर्शन में आयल ई चलचित्र घरेलू बाजार में 2083 साल में प्रदर्शन भेल सब चलचित्रक तुलना में स्वयं के बहुत आगू सफल ठार करबा में भेल बात उल्लेख है। चलचित्र में अभिनेता रविन्द्र सिंह बानिया समायरा थापा मुकुंद कुमार श्रेष्ठ अभय बराल विशाल देवकोटा प्रशंसा सुवेदी सहितक कलाकार सबक अभिनय रहल अछि। गहूँ उत्पादन के लिए उर्वर अग्रणी मानल गेल मध्य प्रदेश में एहि वर्ष गहूँ उत्पादन में कमी आयल अछि। मध्य प्रदेश कृषि निर्देशनालय नकटाझी धनसाक अनुसार एहि वर्ष मध्य प्रदेश में 3,07,32 हेक्टर क्षेत्रफल में प्रति हेक्टर 1.8 मेट्रिक टन के दर से 5,43,160 मेट्रिक टन गहूँ उत्पादन भेल अछि। अगला वर्ष मध्य प्रदेश में 1,78,433 हेक्टर क्षेत्रफल में प्रति हेक्टर 3.37 मेट्रिक टन के दर से 7,31,000 मेट्रिक टन गहूँ उत्पादन भेल छल। एहि वर्ष सबसे अधिक धनसा में 33,500 हेक्टर क्षेत्रफल में प्रति हेक्टर 2.94 मेट्रिक टन के दर से 98,490 मेट्रिक टन गहूँ उत्पादन भेल। मध्य प्रदेश कृषि निदेशनालय बागवानी विकास अधिकृत किरण विश्वकर्मा जानकारी दलन। जलेश्वर नगरपालिकाक 12 थरुआही गांव से विद्यालय गेल गौतम यादव जेठ 7 गते से बेपत्ता आ रहल अछि। थरुआही निवासी पिता आशुतोष यादव माता पूनम यादव के बेटा भिनसर 6 बजे घर से जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 में अवस्थित एडवांस लर्नर्स हिमालयन अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूल में पढ़वाक लेल गेल आ तकर बाद घर वापस नहीं भेल। कक्षा 4 में पढ़वा गौतम एक दिन विद्यालय में पोशाक आ झोड़ा 4 थान कॉपी लकर साइकिल से विद्यालय गेल छल। जेठ 8 गते खोजतलाशी के लिए पिता आशुतोष यादव लिखित निवेदन दिलाक बाद प्रहरी बालक गौतम के खोजतलाश कर रहा जिला प्रहरी कार्यालय महतरिक प्रहरी नायब उपरीक्षक पंचलाल गोले बतौलन। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका आ चीन बीच प्रविधि तथा रक्षा क्षेत्र में बढ़त गेल प्रतिस्पर्धा बीच बेजिंग 10 अमेरिकी कंपनी ऊपर नया निर्यात नियंत्रण घोषणा कलक है। वाशिंगटन चीनिया कंपनी सबके काला सूची में रखलाक बाद चीन ओकर प्रतिकार स्वरूप रक्षा तथा दुर्लभ पृथ्वी खनिज क्षेत्र में संलग्न अमेरिकी कंपनी सबके लक्षित करत प्रतिबंधात्मक कदम उठौलक है। चीनक वाणिज्य मंत्रालय सोम दिन जारी कैल विज्ञप्ति में अमेरिकी सरकार चीनिया कंपनी सबके तथाकथित चीनिया सैन्य उद्यम सूची में समावेश कैल जे के प्रतिक्रिया स्वरूप नया निर्यात नियंत्रण लागू कैल आय जनौलक है। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पासपोर्ट की छपाई में भ्रष्टाचार के अभियोग में पासपोर्ट विभाग के महानिदेशक तीर्थराज अर्याल सहित 16 और संबद्ध कंपनी के खिलाफ अख्तियार ने विशेष अदालत में किया मामला दर्ज। संपत्ति शुद्धिकरण विभाग ने नेकपा एमएलए के उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमंत्री विष्णु पौडेल को सुर्खियत से किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का बंद सत्र कल सुबह तक के लिए हुआ स्थगित। विधान संशोधित कर रासवपा पार्टी संरचना को बनाएगी और अधिक समावेशी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अब समाचार विस्तार से। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने पासपोर्ट छपाई संबंधी ठेका प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप में पासपोर्ट विभाग के महानिदेशक तीर्थराज अर्याल सहित 16 व्यक्तियों समेत संबंधित कंपनियों के विरुद्ध विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर किया है। आयोग ने महानिदेशक अर्याल तथा सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील कुमार केसी सहित अन्य अधिकारियों के विरुद्ध 10,13,04,61,477 रुपए बराबर की बीगो यानी हर्जाना राशि का दावा किया है। मामले में विभाग के पूर्व और वर्तमान अधिकारियों, लेखा तथा प्राविधिक कर्मचारियों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। आयोग ने परराष्ट्र मंत्रालय के तत्कालीन उप सचिव राजा राम दाहाल, पुष्कर राज नेपाल और लेखा उप सचिव भेष प्रसाद भुरतेल के विरुद्ध भी समान हर्जाना राशि के दावे के साथ केस दायर किया है। पासपोर्ट छपाई का ठेका प्राप्त करने वाली जर्मन कंपनी भेरिडास GmbH के नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा के विरुद्ध 8,22,35,04,444 रुपए और म्यूरबैर कंपनी के नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्र राज मल्ल के विरुद्ध 1,90,69,57,32 रुपए की हर्जाना राशि का दावा किया गया है। अख्तियार के अनुसार टेंडर प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण से ही गंभीर अनियमितता, मिलीभगत और भ्रष्टाचार के संकेत मिलने पर जांच शुरू की गई थी। जांच में सरकारी अधिकारियों और आपूर्तिकर्ता कंपनियों के बीच मिलीभगत कर गैरकानूनी लाभ प्राप्त करने की योजना बनाकर प्रचलित कानून के विपरीत प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन किए जाने का निष्कर्ष निकला है। आयोग का आरोप है कि बदनीयत के साथ निर्णय लेकर पासपोर्ट विभाग को 10,13,00,00,000 रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। आयोग के प्रवक्ता सुरेश न्योपाने ने बताया कि प्रतिवादियों के विरुद्ध कानून अनुसार हर्जाना राशि वसूलने, जुर्माना और कैद की मांग करते हुए विशेष अदालत में केस दायर किया गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व अर्थमंत्री रह चुके पौडेल को संपत्ति शुद्धिकरण विभाग ने आज दोपहर सुर्खेत के वीरेंद्र नगर से गिरफ्तार किया है। एमाले पुनर्गठन संबंधी सुझाव संकलन कार्यक्रम के लिए सुर्खेत पहुंचे पौडेल को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी सुर्खेत के SP ठाकुर पोखरेल ने दी। उन्हें वीरेंद्र नगर स्थित होटल में चल रहे कार्यक्रम स्थल से ही गिरफ्तार किया गया। SP पोखरेल के अनुसार पौडेल द्वारा किए गए शेयर कारोबार और संपत्ति के संदिग्ध स्रोत की जांच के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले पौडेल का नाम ललिता निवास भूमि प्रकरण में भी जुड़ा था। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रथम महाधिवेशन के अंतर्गत आज शुरू होने वाला बंद सत्र कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रदेशों के प्रतिनिधियों की नामावली का सत्यापन करने में अपेक्षा से अधिक समय लगने के कारण बंद सत्र कल सुबह 7 बजे से कार्ड वितरण पूरा होने के बाद ही शुरू होगा। ये जानकारी रासवपा के सह महामंत्री मनीष झा ने पत्रकार सम्मेलन में दी। रासवपा निर्वाचन आयोग के प्रमुख भुवन किसी के अनुसार आज तक 3,000 कार्ड छापे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि छपे हुए कार्डों का वितरण आज शाम 7 बजे से शुरू किया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बताया कि बंद सत्र मंगलवार सुबह शुरू होगा। बंद सत्र प्रभावित होने के कारण निर्वाचन कार्यतालिका भी प्रभावित हुई है। बंद सत्र स्थगित होने के साथ ही रासवपा का महाधिवेशन 1 दिन और बढ़ने की संभावना है। महाधिवेशन में नई कार्य समिति का चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने विधान संशोधन कर समावेशिता के आधार पर केंद्रीय समिति में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा विधान संशोधन प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद महाधिवेशन में शामिल महिला, जनजाति, मधेशी, दलित आदि प्रतिनिधियों में उत्साह बढ़ा है। विधान संशोधन प्रस्ताव के अनुसार केंद्रीय उपसभापति पद पर महिला की अनिवार्य व्यवस्था की गई है। केंद्रीय समिति के 99 सदस्यों में से प्रत्येक प्रदेश से 5-5 सदस्यों के हिसाब से 35 सदस्य पदों को पूर्णतः समावेशी बनाया जाएगा बनाया गया है। साथ ही प्रत्येक प्रदेश से कम 2 महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करने का प्रावधान महाधिवेशन में पेश किया जा रहा है। इस साल नेपाल में औसत समय से 6 दिन देरी से प्रवेश करने वाला मानसून देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में फैल गया है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान महाशाखा द्वारा जारी मानसून बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को कोशी प्रदेश से नेपाल में प्रवेश करने वाला मानसून आज 4 अन्य प्रदेशों तक फैल गया है। महाशाखा के अनुसार वर्तमान में मानसून कोशी प्रदेश के पूरे क्षेत्र, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश के कुछ हिस्सों और लुम्बिनी प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र तक फैल चुका है। हालांकि मानसूनी प्रणाली अभी कमजोर स्थिति में होने के कारण देश के अन्य भागों में इसके विस्तार में कुछ दिन और लग सकते हैं। ये जानकारी मौसमविद संजीव अधिकारी ने दी। महाशाखा के अनुसार सामान्यतः नेपाल में मानसून 13 जून को प्रवेश करता है, लेकिन इस साल ये 6 दिन की देरी से आया है। मानसून के प्रभाव के विस्तार के साथ पूर्वी और मध्य नेपाल के विभिन्न स्थानों पर वर्षा शुरू हो गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: बाजु दर्शन
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाजु।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाजु।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
3: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। प्रधानमन्त्री पालेन्द्र शाह ने आज सौराहा स्थित हाथी प्रजनन एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोरसोर का निरीक्षण किया। प्रजनन केंद्र के प्रमुख मणिपूरण चौधरी के अनुसार प्रधानमंत्री शाह अपने परिवार सहित प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचे थे। खोरसोर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में वर्तमान में 9 मादा हाथी और 7 हाथी के शावक हैं। प्रधानमंत्री शाह कालिका नगरपालिका के शक्तिखोर स्थित होटल लटोली सेंचुरी में ठहरे हुए हैं। वहां प्रवास के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से अनौपचारिक मुलाकातें भी की। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे प्रधानमंत्री शाह पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के सिलसिले में चितवन में हैं। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने सेवाग्राहियों को केंद्र में रखकर सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया है। आज नेपाल टेलीकॉम भरतपुर कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने सेवाग्राहियों को प्राथमिकता देते हुए जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पहले सरकारी कार्यालयों में सेवा लेने जाने से बचने जैसी शिकायतें आती थीं, इसलिए अब त्वरित और प्रभावकारी ढंग से सेवा प्रदान कर सेवाग्राहियों का विश्वास जीतने की आवश्यकता है। दूरसंचार क्षेत्र में पहले की तुलना में काफी काम हुआ है, लेकिन जन अपेक्षाओं के अनुरूप अभी और अधिक काम किया जाना बाकी है। मंत्री तिमल सिन्हा ने कहा, 10 वर्ष पहले और आज की स्थिति अलग है। पहले कोई व्यक्ति एक सेवा के लिए 5 दिन तक प्रतीक्षा कर सकता था, लेकिन आज 1 दिन भी इंतजार नहीं करना चाहता। फोन करते ही तत्काल सेवा मिलने की अपेक्षा रहती है, इसलिए आपको उसी अनुरूप काम करना होगा। उन्होंने कहा, कार्यालय सेवाग्राहियों द्वारा भुगतान किए गए धन से संचालित होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जवाबदेही सेवाग्राहियों के प्रति होनी चाहिए, उसी अनुसार कार्य करें ताकि सेवाग्राही संतुष्ट हों। 12 की जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 9 स्थित छाता पिपरा में आज शाम एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। जीतपुर से वीरगंज की ओर जा रही 268-7591 नंबर की मोटरसाइकिल ने छाता पिपरा चौक पर सड़क पार कर रहे एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी, जिससे ये दुर्घटना हुई। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता DSP मीन बहादुर घले के अनुसार दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों और एक पैदल यात्री की मृत्यु हो गई। मृतकों में से 2 की पहचान हो चुकी है। DSP घले ने बताया कि मृतकों में जीतपुर सिमरा 1 पथलैया निवासी तथा हाल काठमांडू में रह रहे 20 वर्षीय सभ्य अधिकारी और मोटरसाइकिल चालक काठमांडू महानगरपालिका के टोखा निवासी डीजन जोशी शामिल हैं। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 3 को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घले के अनुसार जोशी और अधिकारी के शव बयोधा अस्पताल में और अज्ञात पैदल यात्री का शव नारायणी अस्पताल में रखा गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री और पार्टी नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। लन्डन स्थित 10 डाउनिङ स्ट्रीट में अपने संबोधन में स्टार्मर ने कहा कि उनकी पार्टी के भीतर यह सवाल उठ रहा था कि क्या वो अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी का जवाब सुन चुके हैं और उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं। उन्होंने लेबर पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी से नए नेतृत्व चयन की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह करते हुए कहा कि नेतृत्व पद के लिए नामांकन 9 जुलाई से शुरू किए जाएं और गर्मियों की छुट्टियों तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित एक इमारत में आग लगने से 15 बच्चों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य बच्चे घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आग एक कोचिंग सेंटर में लगी थी। अधिकारियों के अनुसार इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर पालतू पशुओं की दुकान और ऊपरी मंजिल पर गेमिंग जोन संचालित था। आग लगने के बाद बच्चों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर अमी अग्रवाल ने 15 बच्चों की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि 21 से 22 बच्चों को अस्पताल लाया गया था। इनमें 5 बच्चों का उपचार जारी है जबकि 2 बच्चे इमारत से कूदने के कारण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए तथा गंभीर घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पासपोर्ट की छपाई में भ्रष्टाचार के अभियोग में पासपोर्ट विभाग के महानिदेशक तीर्थराज अर्याल सहित 16 व्यक्तियों और संबद्ध कंपनी के खिलाफ अख्तियार ने विशेष अदालत में किया मामला दर्ज। संपत्ति शुद्धिकरण विभाग ने नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमंत्री विष्णु पोडेल को सुर्खियत से किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का बंद सत्र कल सुबह तक के लिए हुआ स्थगित। विधान संशोधित कर रासोपा पार्टी संरचना को बनाएगी और अधिक समावेशी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
6: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
7: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
8: *1415# डायल गर्नुहोस्।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
9: झण्डु आयुर्वेद,
10: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
9: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
10: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
9: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
10: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
11: नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी भई भविष्य सुरक्षित बनाओ। यस योजनामा न्यूनतम मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गरेर सहभागी हुन सकिन्छ।
12: नागरिक लगानी कोष।